अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। श्री अयोध्या राम जी लला की जय। श्री पावन सुत हनुमान की जय।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

श्री मद भगवद गीता वह दिव्य एवं पावन संदेश है जो स्वयं परमपिता परमेश्वर ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव प्रजाति को दिया है। परम प्रभु स्वयं कहते हैं कि गीता उत्तम सार है, मेरा श्रेष्ठ निधान है। गीता ही अति उग्र मेरा और अविनाशी ज्ञान है। गीता मेरा परम रहस्य है, मेरा गुरु महान है। परम पद ये पार्थ मेरा हृदय है, प्राण है। इस पवित्र शास्त्र के रचनाकार गुरुवर व्यास देव के शब्दों में गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखद्मा द्विनिश्रता, अर्थात कर्तव्य हो गीता सुवाचन अनर्थ शास्त्र विस्तार है, पद्मनाभ के मुख कमल से उदित ये उद्गार है। आइए इस दिव्य संदेश के उद्घोषक भगवान श्री कृष्ण की अनुपम छवि को अपने मन मंदिर में सजोएं।

गीता न तो महज दार्शनिक एवं विद्या चर्चा का विषय है और न ही मात्र जीवन निवृत्ति अथवा मोक्ष का उत्तम साधन, अपितु यह एक सुखमय जीवन जीने की अद्भुत कला है। इट हैज बीन राइटली सेड दैट गीता इज नॉट अ रिटायरमेंट प्लान बट इट इज द एसेंशियल डायनामिक्स ऑफ द लाइफ। द डीप रूटेड फिलोसफी इन ईच वर्ड ऑफ दिस ग्रेट स्क्रिप्चर गिव्स अस अ ग्लिम्स ऑफ रेयर डिवाइन नॉलेज एंड विजडम रिक्वायर्ड फॉर हैप्पी prosperous and contented life. In spite of repeated reading,

teachings and analysis, Gita always remains eternally fresh and educative. आधुनिक युग के महर्षियों ने, आचार्यों ने, कर्मयोगियों ने, क्रांतिकारियों ने, समाजशास्त्रियों ने, चिकित्सकों ने व वैज्ञानिकों ने इसे अपनाया है। संत ज्ञानेश्वर, आदि शंकराचार्य, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा, लोकमान्य तिलक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्वामी प्रभुपाद एवं स्वामी राम सुखदास जैसे महान व्यक्तियों ने इस संदेश को न केवल अपनी जीवन शैली बनाया अपितु उत्कृष्ट शब्दों में अपने उद्गार भी जग जाहिर किए। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब मैं निराशाओं से घिरा होता हूँ तो मैं गीता को उलटता पलटता हूँ और मुझे धैर्य दिलाने वाला कोई न कोई श्लोक अवश्य मिल जाता है। आचार्य विनोबा लिखते हैं,

अर्थात मेरा शरीर माँ के दूध पर जितना पला है उससे अधिक मेरी बुद्धि का पोषण गीता के दूध पर हुआ है। महामना पंडित मालवीय के विचार हैं कि इस अद्भुत ग्रंथ के 18 छोटे अध्यायों में इतने सारे उच्च गंभीर तथा सात्विक विचार भरे हैं कि वे एक साधारण मनुष्य को भी निम्न से निम्न दशा से उठाकर देवता के स्थान पर बिठाने की शक्ति रखते हैं। आइए इस पवित्र पावन संदेश का सरल भाषा में सरस संगीत के माध्यम से पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण करें। यह सकल शास्त्रों की स्वामिनी है, समस्त श्रुतियों की रानी है, वह स्वयं श्री हरि मुख से निकली मधुर वाणी है।

प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का यथारूप सरल एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय एक अर्जुन विषाद योग। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन है। उनके अनुचर संजय को गुरुवर व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त है। धृतराष्ट्र संजय से दूर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध के लिए उत्सुक विशाल कौरव व पांडव सैन्य दलों का हाल पूछते हैं। संजय महान वीर व पराक्रमी योद्धाओं से युक्त दोनों सेनाओं की सैन्य व्यवस्था के बारे में बता

कि कुरु सेना के प्रधान पितामह भीष्म अपने शंख से सिंहनाद से गर्जना करते हैं। प्रत्युत्तर में पांडव सेना के सभी योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं। ऋषिकेश के पंचजन्य एवं धनंजय के देवदत्त शंख की अत्यंत दिव्य तथा गगनभेदी ध्वनि से वातावरण में कोलाहल हो उठता है।

हे राजन, अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण उसके रथ को बीच सेनाओं के खड़ा करते हैं। अर्जुन शत्रु पक्ष में अपने सभी स्वजनों, प्रियजनों एवं आचार्यों को देखकर ऋषिकेश से कहता है,

व्याकुल वैमोहग्रस्त अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष राज्य भोग के लिए स्वजन व गुरुवध को पाप योग्य एवं असंगत कार्य बतलाते हुए विभिन्न तर्कों के साथ युद्ध न करने का निर्णय लेता है। वह धनुष बाण एक ओर रखकर अपने रथासन पर बैठ जाता है।

बहती आ रही है ताम्रपर्णी और युग युग तक बहती रहेगी। ये ताम्रपर्णी के बारे में लिखा गया साहित्य भले ही मर जाए, ताम्रपर्णी बहती रहेगी ताम्रपर्णी।

पन्नी की यश गाथा गाते हुए कवि कुमरा गुरुपरर जैसे सरिता के रूप गुण पर विमोहित हो उठते हैं, तभी तो ताम्रपर्णी की जलधारा की विशेषताओं का गौरव गान करते हुए भी पौराणिक गाथाओं की ओर भी संकेत करते हैं। वास्तव में तमिल साहित्य संस्कृति में ताम्रपर्णी का महत्वपूर्ण स्थान है। महाकवि भारती, कुमरा गुरुपर स्वामीगल, मुत्तुपाटन और महाकवि कंबन जैसे तमिल के ख्यात कवियों ने ताम्रपर्णी की यशगाथा को अपने काव्य में व्यक्त किया है।

0: भारतीय संस्कृति में नदियों को बहुत महत्व मिला है, क्योंकि सभ्यता के विकास में इनका अन्यतम स्थान रहा है। इसीलिए अधिकांश नदियों की महिमा मंडित कथाएं पुराणों में मिल जाती हैं। गंगा यमुना, कृष्णा कावेरी, नर्मदा गोदावरी और ब्रह्मपुत्र सोन आदि नदियों की तरह भारतीय प्रायद्वीप की सुदूर दक्षिण की नदी ताम्रपर्णी के उद्भव की गाथा भी पुराणों में उपलब्ध है।
1: कथा है शिव विवाह का समारोह संपन्न।

0: कहते हैं कि शिव पार्वती के विवाह का अलौकिक दृश्य देखने के लिए देव गंधर्व ऋषि मुनियों के समुदाय में ऋषि अगस्त्य भी पधारे थे। उसी समय उन्हें शिवजी ने बुलाकर गंगा जल से भरा कमंडल दिया और साथ ही अविलंब दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया।
1: तो क्या अगस्त्य ऋषि शिव विवाह देखे बिना ही दक्षिण की ओर चले गए?
0: हाँ, उन्हें जन कल्याण हित यात्रा करनी थी, इसलिए महादेव शिव ने उन्हें ये वरदान दिया कि आप हमारे विवाह को कोदगैत गिरि से ही देख सकेंगे। ऐसा वरदान पाकर अगस्त्य ऋषि कमंडल उठाकर दक्षिण की ओर चले गए।
1: फिर क्या हुआ?

0: उड़ता हुआ एक कौवा आया। उसके बैठते ही कमंडलू लुढ़क गया और उसका आधा जल बाहर आ गिरा, जो धारा बनकर आगे प्रवाहित हो गया। कहते हैं कि उसी पवित्र प्रवाह से दक्षिण की गंगा कावेरी का उद्भव हुआ था।
1: लेकिन आप तो ताम्रपर्णी के उद्भव की कथा सुना रहे थे।
0: हाँ भाई, अब आगे की कथा सुनो, तभी पूरी बात समझ में आएगी ना। अपने कमंडल में बचा हुआ जल लेकर अगस्त्य मुनि कोज जयगिरी पहुंचे। वरदान के अनुसार वहां पर वर वधु के रूप में उन्हें शिव पार्वती के दर्शन प्राप्त हुए। शिव जी के आदेश से अगस्त्य ऋषि ने कमंडल का शेष जल प्रवाहित कर दिया, जो पूर्णय नदी के रूप में तेज जलधारा बनकर बहने लगा। यह पूर्णय नदी ही ताम्रपर्णी के रूप में युग युगों से बहती चली आ रही है। कहते हैं जिस प्रदेश से पूर्णय नदी बहती है, कभी उसी क्षेत्र को पूर्णय नाड कहा करते थे। लगभग 7,000 वर्ग मील में फैले इस क्षेत्र को पूर्णय स्थल कहा गया है। ये लगभग त्रिकोण आकार का है।
2: तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिला और केरल के दक्षिणी भाग में स्थित है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में ही है एक पोदिगई पहाड़।
0: ताम्रपर्णी का उद्भव इसी पोदिगई गिरी से हुआ है। पोदिगई से 1837 मीटर ऊंची अगस्त्यर गिरी के शिखर दिखाई पड़ते हैं। इस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है। वास्तव में पाणपूर्णय यानी ताम्रपर्णी अगस्त्यर पहाड़ से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। सितंबर नार जिला बनने से पहले ताम्रपर्णी एक ही जिले में बहकर सागर में मिल जाती थी।
2: वास्तव में पोदिगई पहाड़ में पूर्णय नदी की जलधारा दो भागों में बंट जाती है। एक का नाम आनपूर्णय यानी पुरुष पूर्णय और दूसरे का नाम तणपूर्णय यानी नारी पूर्णय है। आनपूर्णय केरल से होती हुई अरब सागर में मिल जाती है और तणपूर्णय बंगाल की खाड़ी तक पहुंचकर सागर जल में विलीन हो जाती है। मूलतः तमिल भाषा का तणपूर्णय शब्द ही कालक्रम में बदलकर

पठारी भाग में बहने वाली सरिता ताम्रपर्णी के नाम के बारे में एक और प्रसिद्धि है। इस नदी के उद्भव स्थल पर चंदन के वृक्षों के झुरमुट हैं। इनके पत्ते नदी जल में गिरते हैं, जिनका रंग ताम्रय यानी कमल के फूल की तरह हो जाता है। इसीलिए इस सरिता को ताम्रपर्णी कहते हैं। कुछ विद्वानों का विचार अलग है। उनके अनुसार ताम्रपर्णी नदी की रेत में तांबे के कण पाए जाते हैं, फलस्वरूप तांबा या ताम्रयुक्त होने के कारण इसका नाम ताम्रवर्णी या ताम्र।

0: पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर मैदानी भाग में आने पर इसकी धारा की तीव्रता समय समय कम होने लगती है। अब दोनों ओर से दो अल्हर सहेलियों की भांति दो सहायिकाएं पेयारी और चित्तारी ताम्रपर्णी की मुख्य धारा में आकर मिलती है।
1: वेगवती होती हुई ताम्रपर्णी नदी की धारा उछलती कूदती आगे बढ़ जाती है। वानर की

0: वाणी तीर्थम क्या है और कहाँ पर स्थित है?
1: पर्वत मालाओं से उतरकर ताम्रपर्णी की धारा पठारी भाग में बहती हुई विशाल जलप्रपात बनाती है, उसी को वाणी तीर्थम कहते हैं।
2: ताम्रपर्णी की जलधारा वाणी तीर्थम में लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है। चट्टानों पर गिरते ही इसकी जल राशि छिन्न भिन्न होकर फैल जाती है, हेमिल जल और उस पर फुहारों से बना कोहरा। लगता है जैसे निरभ्य आकाश से बादलों सहित झुक आया हो। यही स्थल है वाणी तीर्थम, अर्थात जिस तीर्थ पर आकाश उतर आया हो।

0: वहां एक विशाल जलप्रपात के पास में तट पर देवी का मंदिर है, जहां भक्तगण पूजा आरती के लिए एकत्र होते हैं। यहां अमावस्या की संध्या को पूजा का विशेष महत्व है।
1: और सुना है कि ताम्रपर्णी नदी पर वानतीर्थम से आगे सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल नीलकंठन का संधि है, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम कहा जाता है।
2: हाँ, नीलकंठन कसम केवल पर्यटन स्थल ही नहीं, ताम्रपर्णी नदी के पास बने सरोवर के साथ ये एक ऐतिहासिक स्थान भी है।
0: ऐसी कथा है कि जहाँ पर ताम्रपर्णी से उसकी सहायता ताराय नदी मिलती है, वहाँ पर पांड्य राजाओं का बनाया हुआ एक छोटा सा दुर्ग था। जब दक्षिण में नवाबों के साथ युद्ध होता था तो पांड्य राजा इसी किले में शरण लेते थे।
1: इस किले के बारे में रोचक जानकारी एस लक्ष्मण दे रहे
3: हैं। சுத்தி பார்க்க வரது சகல இடத்துல இருந்தும் ஆளுகள் எல்லா இடத்துல இருந்தும் வராங்க. மெட்ராஸோ, ஆந்திராவோ.
0: நீலகண்டன் கசம் கே நிகட் பாண்டி ராஜாவும் கிளா தான். கிளி கே அதே கி ஓர் விசால் தர்வாதா தான். ஐசி பிரதா தி கி ஜப் கோய் சத்ரு ஆதா ஹுவா திகாயி படதா தா தோ துவார் பர் தைனாத் சிபாஹி டோல் பஜா கர் சங்கேத் தேதா ஹுவா सावधान किया करता था। एक बार ऐसी घटना हुई कि शत्रु आ गए और सैनिक शत्रु दल किले में प्रवेश कर गया और अभिमानी पांडे राजा को पराजय स्वीकार नहीं थी, इसलिए उसने अपना सर काट कर नदी जल में फेंक दिया। उस स्थान को नीलकंठन कसम कहा जाता है, जहाँ पर राजा का सिर यानी मुंडन गिरा, उस स्थल को मुंडन तुरई नाम दिया गया।
3: नालालंबर मंगला के मेले और आर्च बोलने के दिर पांच चंगा मार गए। आगे ले रहा तो कंधे कोटे की वासल अंदर आ रहा। अंदर आ रहे लड़ने में ये दिल वंदा कोटे आ जाना।
1: मुंडन तुरई इसी नाम से तमिलनाडु में एक मुख्य टाइगर रिजर्व यानी शेरों का अभयारण्य भी है। ये ताम्रपर्णी नदी की घाटी में फैला हुआ है। मुंडन तुरई अभयारण्य की जानकारी दे रहे हैं भारतीय वन सेवा के अधिकारी श्री भगवान सिंह।
4: क्लब कार्ड मुंडन तुरई टाइगर रिजर्व कंप्राइजेज ऑफ 817 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट इन द सदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट।
5: 1988 में भारत सरकार ने क्लब कार्ड मुंडन तुरई को
6: शेरों का संग्रहालय बनाया। आज से 17 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला घना जंगल पश्चिमी घाट के दक्षिण हिस्से का ही सिलसिला है। वहाँ सिर्फ शेर नहीं पाए जाते बल्कि बारह सिंघा, हिरण, चीता, नीलगाय और अनेक जानवर पाए जाते हैं। यहाँ सदाबहार किस्म के वृक्ष, जलाशय और पहाड़ी ढाल सुंदर नैसर्गिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ अभयारण्य नहीं है, एक अच्छा पर्यटन स्थल भी बन गया है, जिसे देखने के लिए बहुत से लोग आया करते हैं। अभयारण्य के वृक्षों की रक्षा के लिए सुरक्षा बल तैनात किया गया है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए हर तरह की कोशिश की जाती है।
4: मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई पीक फॉरेस्ट, टू थॉर्न फॉरेस्ट।
1: भारत के ध्रुव दक्षिणी भाग में स्थित इस सदा नीरा ताम्रपर्णी का क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है।

0: कार्य के लिए सिंचाई जल के अलावा ताम्र पर्णी से यथेष्ट मात्रा में जल विद्युत प्राप्त होने लगी है, जिससे उद्योग केंद्रों का विकास हुआ और तिरुनेलवेली जिले की कायापलट हो गई।
1: ताम्र पर्णी पर इस महत्वपूर्ण जल विद्युत योजना का नाम क्या है और उसका निर्माण कैसे हुआ?
0: पापनाशम, ये नाम है ताम्र पर्णी नदी के मुख्य जलप्रपात का, जहाँ पर ताम्र

0: चांद पड़ने की जलधारा से पन बिजली प्राप्त करने के लिए हमारे इंजीनियरों ने अथक परिश्रम किया। नदी की वेगवान धारा को रोककर एक विशाल जलाशय बनाने के लिए इस स्थान पर दोनों ओर की पहाड़ियों के बीच ऊंचा बांध निर्मित किया गया। जलाशय के बन जाने से यहाँ के किसानों को 12 महीने खेतों में सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा, साथ ही तांबुपर्णी में आने वाली बाढ़ का भय भी समाप्त हो गया। जल विद्युत उत्पादन करने वाली दक्षिण की पुरानी पनबिजली योजना पाप मौसम की जानकारी दे रहे हैं जिलाधिकारी श्री आर वेल्लू।
1: तामी आटे 1944 அந்த அணை மட்டம் 143 அடியாகும். முழு கொள்ளளவு
2: 1944 தாமிரபரணி நதிக்கு ஜல்தாரா பர் பாபநாசம் கே நிகட் விஷால் பாந்த் கா நிர்மாண் கியா கயா, ஜிஸ்கே ஜலாஷய மே 5,500 கியூபிக் ஃபீட் பானி रखने की क्षमता है। भरे होने पर इसकी गहराई 143 फीट की होती है। ताम्रपर्णी नदी पर दूसरा बांध भी यही फिजबलारू पर बनाया गया, जिसके जलाशय की क्षमता 1,225 क्यूबिक फीट और गहराई 143 फीट की है।
1: 11 अणगलम आंगन कटपुर 86,000 एकड़।
2: इन बांधों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य किसानों को ठीक समय पर सिंचाई के लिए पानी देना, बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत का उत्पादन और इस तरह महादेव शिव शंकर के वरदान के अनुसार ताम्रपर्णी पाप नाशम तथा शेष बलारू के बांधों के द्वारा विकास कार्यों में योगदान देकर अपनी महिमा का लाभ बिखेर रही है।
1: அது சார்ந்த மற்ற நோக்கங்கள், ஒன்று வெள்ளக்காலங்களிலே தண்ணீரை ஒருமுகப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி விடுவதன் மூலம்
2: ஆகிய பகிர் பர் தாமிரபரணி நதிக்கு சாயிக்கா மணிமுத்தாருக்கு ஜலதாரா பாதிக்கப்படாமல் 1958 தயார் கியா கயா ஹை, उससे 22,000 एकड़ की रबी फसल वाले खेतों के लिए सिंचाई जल मिलता है।
1: ताम्रपर्णी
2: की जलधारा से विद्युत उत्पादन के अलावा पेयजल और सिंचाई जल वितरण का प्रबंध किया गया है। अब सिंचाई विभाग ने सिंचाई जल प्रबंध के लिए तारीख भी निश्चित कर दी है। रबी की फसल के लिए जून की 1 तारीख और खरीफ के लिए 1 अक्टूबर को पानी छोड़ा जाता है।
0: वैज्ञानिकों तथा जल शास्त्रियों ने इसके जल के उपयोग का प्रयत्न जारी रखा है। अनेक छोटी बड़ी बहुउद्देशीय योजनाएं आरंभ की गई। एक सुखद तथ्य है कि छोटी होती हुई भी ताम्रपर्णी दक्षिण भारत में पहली नदी है जिसके सर्वाधिक जल का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि इस इलाके में खुशहाली आई है और विकास का लाभ किसानों तथा ग्रामवासियों को प्राप्त हो रहा है। धान उपजाने वाले इस कृषि प्रधान क्षेत्र में चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। नदी ताम्रपर्णी के सहारे पूर्ण हुए विकास कार्यों की जानकारी अंबा समुद्र केंद्र के प्रधान श्री डब्ल्यू वेल्फर्ड मैनुअल दे रहे हैं।
3: ताम्रपर्णी पासन पगडियल इरुपोगंगलिल नेल सागुबडी செய்யப்படுகிறது। முதல் போகத்தில் மே ஜூன் முதல் செப்டம்பர் அக்டோபர் வரை குறிய
2: கால ताम्रपर्णी नदी का सिंचाई जल खेतों के लिए उपलब्ध होने लगा। इस सुविधा से पूरा लाभ उठाने के लिए यहां की मुख्य फसल धान की ओर ध्यान दिया गया। साल में ही धान की 2 फसलें उगाई जाती हैं, पहली मई जून में तथा दूसरी सितंबर अक्टूबर में। क्षेत्र में चावल के उत्पादन को बढ़ाने और इसकी खेती समस्याओं के निराकरण के लिए ताम्रपर्णी नदी के किनारे अंबा समुद्रम नामक स्थान पर 1937 में चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई।

0: फसलों कीटाणुनाशकों तथा खाद के बारे में तरह तरह के प्रयोग कर धान की अच्छी किस्म प्राप्त की जाती है, जिससे चावल का उत्पादन बढ़ता रहे। अब तक इस अनुसंधान केंद्र से 18 प्रकार की नई किस्में प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें 1986 में विकसित अंबई 16 उत्तम कोटि की है, जिसे बहुत कम समय में ही धान की अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। इसी के द्वारा 1989-90 में चिदम्बरनार जिले के कृषि मेले में अधिक चावल उपजाकर कादर साहब नामक एक कृषक ने प्रथम पुरस्कार जीता था।
1: தோகை அளவுகளுக்கு நடுத்தர எதிர்ப்பு சக்தி கொண்ட இந்த ரகம்

और नदी ताल पर्णी पूर्व दक्षिण की दिशा में बहती चली जाती है, जहाँ इसकी प्रिय सहायिका से तार मिलती है। संस्कृत साहित्य में इसकी जल धारा को सौंदर्यमयी मानकर चिन्ना के नाम से पुकारा गया है। हालांकि चित्तार नदी की कुल लंबाई केवल 62 किलोमीटर है, किंतु इस पर 18 छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं।

0: ताम्रपर्णी और पिचकारी के मध्य द्वाब में दूर दूर तक धान की हरी भरी फसलें लहलहाती हैं। बेगवती नदी पिचकारी पठारी प्रदेश से होती हुई कुट्रालम नामक क्षेत्र में पहुंचकर ताम्रपर्णी के मिलन के पहले कई झरनों का निर्माण करती है। इस स्थल को कुट्रालम जलप्रपात के नाम से लोकप्रियता मिली है। मशहूर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कुट्रालम के बारे में वहां के प्रशासकीय अधिकारी गुरु स्वामी के शब्दों में,
1: कुट्रालम पेरुमे सोलनुमा अदुक्कु तमिळ्ल वार्त्तैगळे कडैयादु, अदु कुट्रालत्तिल इरुंदु आंडु अनुभवत्तिनुम्दान तेरियुम।
2: अगर कुट्रालम की विशेषता बतानी हो तो शब्दों की कमी हो जाएगी, किंतु यहाँ कुट्रालम आकर इन झरनों में नहाकर तथा प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर बस कहना कठिन है, पर अनुभव किया जा सकता है। कुट्रालम में अनेक झरने हैं, जिनमें पेरुवी, सुकुरुवी, पूनारुवी, आइंद अरुवी मुख्य है। कुट्रालम में एक बार आने से बार बार आने को मन करता है। यहीं कुट्राल नागर मंदिर, भक्तों का ऐसा विश्वास है कि इन झरनों में स्नान करके मंदिर में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस कारण पर्यटकों के अलावा यहाँ धार्मिक यात्रियों की भी भीड़ होती है और पूजा अर्चना के स्वर गूंजते रहते
1: हैं।
0: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ताम्रपर्णी का जल भी गंगा जल के समान पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला है, क्योंकि इसका आदि स्रोत शिव जी का कमंडल है। किंतु युगों युगों से बहती आ रही सरिता ताम्रपर्णी का जल मनुष्यों के द्वारा अवांछित उपयोग किए जाने के कारण अब दूषित होने लगा है। ताम्रपर्णी जल में बढ़ती हुई गंदगी से लोगों में चिंता होने लगी। इसके जल को दूषित होने से बचाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तिरुनेलवेली शाखा के इंजीनियर श्री के कार्तिकेयन दे रहे हैं।
3: सुमार 120 किलोमीटर नीलमुल्ल ताम्रपर्णी नदी तुम्हारे उत्पत्ति कहवीर
4: ताम्रपर्णी नदी के जल के दूषित होने के मुख्य कारणों में इसके तटों पर स्थापित कारखानों और मिलों से आने वाला गंदा पानी है। मजदूरों तथा आसपास बसे लोगों द्वारा भी नदी में गंदगी फैलाई जाती है। सुबंदरनार जिले में स्थित रासायनिक और अन्य छोटे कारखानों से भी गंदगी नदी में आती है। ताम्रपर्णी नदी में प्रदूषण कम करने के लिए उन कारखानों के अधिकारियों को समझाया जाता है कि जल शुद्ध करने वाले यंत्रों को ठीक रखें और नदी में गंदगी कम बहाएं। इनके अलावा आसपास के लोगों को जागरूक और सावधान किया जाता है।

0: जन संचार के साधनों द्वारा भी संदेश दिया जाता है कि नदी में गंदगी ना फेंकें। दूषित पानी से कई तरह की बीमारियां होती हैं।
1: சிறப்பாக முழு திறனோடு இயக்கும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

घाट के पोदुगई पर्वत से निकलकर मचलती हुई ताम्रपर्णी करीब 130 किलोमीटर की राह तय कर कुरुमेल वेली क्षेत्र को शस्य श्यामल बनाती हुई टेढ़ा का रूप धारण।

0: फिर वो पहुंचती है बंगाल की खाड़ी के नजदीक तिरुवैकुंटम।
1: பரணி பரணி பாடி வரும் தாமிர பரணி இந்த தரணி தரணி செழிக்க வந்து பாடு
0: திருவைகுண்டம். ये नाम है उस स्थान का जहाँ से ताम्रपर्णी की जलधारा सागर के अनंत अंक में समाहित होने को आकुल होती है और अंत में ताम्रपर्णी

0: नमस्कार, आज से हम एक नया धारावाहिक प्रसारित कर रहे हैं, शिव महिमा। ये धारावाहिक भगवान शंकर से संबंधित है। चारों वेदों, सभी उपनिषदों और पुराणों में किए गए वर्णन का सार तत्व है और शिव पुराण पर आधारित है। प्रिय श्रोताओं, हम आपको उस स्थान पर ले चलते हैं जहां शिव पुराण का वाचन आरंभ होने वाला है। यहां मुनि श्रेष्ठ सूत जी और शौनक जी भगवान शिव की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
1: ओम नमः शिवाय।
2: मुनि शौनक, सारे संसार में पूजे जाने वाले सभी देवी देवताओं में अकेले भगवान शंकर ही ऐसे देवादिदेव हैं।

0: जिनकी पूजा दोनों रूपों में की जाती है, साकार रूप में भी और निराकार रूप में भी।
1: महामुनि सूत जी, ये अत्यंत विलक्षण बात है, कृपा कर विस्तार से समझाइए।
0: शौनक, भगवान शिव का लिंग रूप निराकार है, वो संसार की उत्पत्ति का प्रतीक है, और भगवान शंकर का मूर्ति रूप साकार है। साकार रूप में भगवान शंकर कामदेव को भस्म करने वाले भी हैं।
1: सूत जी, ये कथा तो बड़ी रोचक जान पड़ती है। भगवान शिव के साकार रूप के संबंध में कुछ और बातें बताइए।
0: शौनक, भगवान शंकर का साकार रूप अत्यंत दिव्य और गंभीर तत्वों से भरा हुआ है। सृष्टि के आरंभ में सुरों और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकले अमृत को तो देवताओं ने ग्रहण कर लिया, किंतु सारे संसार की रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण करने वाले भगवान शिव ही हैं।
1: हाँ, ये कथा तो सुनी हुई है।
0: इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के नख से प्रवाहित सुरसरी गंगा को अपनी जटाओं में बांधने वाले भगवान शंकर ही हैं, जिन्होंने राजा भगीरथ के पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को अपने शीश पर धारण किया। दूसरी ओर वो संसार से पूरी तरह विरक्त भस्म रमाए कमंडलधारी और वीतराग भी हैं। शीतलता के प्रतीक चंद्रमा को अपने शीश पर धारे हुए भी हैं और संसार के विनाश के लिए अपने ललाट पर तीसरे नेत्र को भी धारण किए हैं।
1: भगवान, इसका रहस्य क्या है?
0: शिव महिमा से संबंधित अनेक प्रसंग हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के अतिरिक्त अनेक उपनिषदों और पुराणों में भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं वायु पुराण, कुर्म पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और लिंग पुराण। लेकिन शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत विवरण शिव पुराण में ही सबसे अधिक है।
1: महाज्ञानी सूत जी, मुझे पुराणों की कथा के सार तत्व को समझाइए।
0: वत्स, ये शिव पुराण जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, कानों के लिए अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार का उपदेश पाकर ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है।
1: महामुनि, इस कथा को सुनने से और उस पर आचरण करने से कौन कौन से पापों का नाश हो जाता है?
0: शौनक, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें देवराज नामक एक व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ।

0: देखा तुमने
1: जी,
0: ऊंचे कुल में पैदा होने में कितना बड़ा सुख है।
2: हाँ देवराज जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। संसार भर के छल कपट अनाचार करने का जैसे जन्मजात अधिकार ही मिल जाता हो।
0: ठीक कहा तुमने, उच्च कुल का व्यक्ति जानकर भोले भाले लोग अनायासी मेरी धूर्तता का शिकार बन जाते हैं।
2: और बिना किसी श्रम के आप अटूट धन के स्वामी बन जाते हैं।
0: अरे अरे, वो देखो एक व्यापारी आ रहा है।
2: हाँ हाँ गुरु जी, देखने से तो काफी धनी जान पड़ता है।
3: मैं कोई नई चाल चलता हूँ, तुम यहीं ठहरो और मेरी प्रतीक्षा करो।
2: जी अच्छा।
0: अरे मरा रे, हाय ईश्वर, मर गया रे।
4: क्या हुआ बंधु?
0: हाय पेट में भयंकर दर्द, असहनीय वेदना।
4: आप कौन है और कहाँ रहते हैं?
0: किरात नगर का बामन हूँ, वेद पाठी हूँ, पास के नगर विराट के सेठ कृष्ण चंद्र के निमंत्रण पर आया था, वहीं से लौट रहा था कि
4: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपको नगर वैद्य के पास ले चलता हूँ।
0: ठीक है, चलिए
4: चलिए।
0: आपकी बड़ी कृपा।
4: कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। लीजिए जल पीजिए।
0: जी। अरे वाह, ये कैसा चमत्कार!
4: क्या हुआ महाराज?
0: पानी पीते ही सारा दर्द गायब। मुझे लगता है मैं एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। आपके हाथ में तो अद्भुत शक्ति है महाराज। क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूँ?
4: हाँ क्यों नहीं।
0: अरे वाह, आपकी हाथ की रेखाएं तो बहुत अच्छी हैं। यश है, कीर्ति है, लंबी आयु है, बहुत सुखी परिवार है आपका।
4: सच है महाराज, मेरी पत्नी और दोनों बेटियां बहुत ही धर्मपरायण हैं।
0: लेकिन आपको संतान का, आपका पुत्र
4: नहीं है महाराज।
0: लेकिन योग है
4: जी,
0: अवश्य है, निकट भविष्य में ही है।
4: अच्छा,
3: लेकिन ठहरिए महाराज।
0: ओहो, ये राहु और शनि की वक्र दृष्टि, मंगल का कोप। अच्छा एक बात बताइए
4: जी,
0: देखिए संकोच ना कीजिए।
4: नहीं,
0: क्या पिछले दिनों आपने पीले सफेद रंग की कोई चमकदार चीज खरीदी?
4: पीले सफेद रंग की कोई चीज नहीं, तो
0: याद कीजिए, कोई कपड़ा, कोई बर्तन, अथवा कोई आभूषण।
4: आभूषण? अरे हाँ, याद आया, पिछले साल मैंने अपनी पत्नी के लिए हीरे का हार खरीदा था।
0: बस बस बस बस, वही है अनिष्ट की जड़। उस हार के घर में आने के बाद से ही आपके पुत्र प्राप्ति के योग अकारत होने लगे हैं महाराज। उसी हार के कारण आपकी आशा फलवती नहीं हो रही है।
4: अच्छा
0: हाँ?
4: तो महाराज उसका कोई उपाय?
0: उपाय? उपाय तो है, यदि वो हार आप बिना किसी को बताए किसी अपरिचित बामन के हाथों से बहते जल में छुड़वा दें तो 6 माह के अंदर ही आपकी पत्नी गर्भ धारण कर सकती है।
4: अच्छा
0: हाँ, लेकिन कठिनाई ये है कि इसकी जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए, आपकी पत्नी को भी नहीं।
4: ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा,
3: भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। अच्छा अब मुझे अनुमति दें, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की।
0: भाई भाई तनिक गाड़ी रोकना।
4: नहीं नहीं भाई, घर ले चलो।
3: महाराज आप तो भविष्य दृष्टा हैं, ईश्वर की कृपा से आपके दर्शन हुए। महाराज अब आप ही मेरे लिए वो अनुष्ठान भी कर दे तो
0: मैं। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वैसे मैं अपरिचित बामन तो हूँ,
1: लेकिन यह काम किसी जानकार से ही करवाएं तो ठीक रहेगा।
0: नहीं,
1: जानकार तो नहीं होना चाहिए, बड़ी व्यवस्था है।
3: महाराज, क्या आप मेरे लिए इतना इतना कष्ट सहन नहीं करेंगे? महाराज, मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगा।
1: नहीं, एहसान की कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे ऊपर आपका बहुत उपकार है। यदि मैं आपके थोड़ा सा भी काम आ सकूं तो मेरा बोझ ही कम होगा ना। लेकिन एक बात कहते थोड़ा संकोच होता है।
3: महाराज, संकोच छोड़ें और कहिए।
1: इस पूजा के लिए जो भी पूजन सामग्री, दक्षिणा आदि होती है ना, वो यजमान को ही करनी पड़ती है, वरना उसका सुफल प्राप्त नहीं होता।
3: अरे महाराज, ये बात कहने में भला संकोच क्यों? ये तो अनुष्ठान का विधि विधान हुआ ना। अच्छा ये बताएं, क्या इसके लिए 500 सोने की मोहरें काफी होंगी?
1: हाँ, इतने में भी काम चल ही सकता है। लेकिन महाराज, पूरे विधान के लिए अगर 1000 सोने की मोहरें होती तो बहुत अच्छा होता।
3: अरे कोई बात नहीं, मैं आपको उस हार के साथ 1000 सोने की मोहरें भी दे दूंगा। लीजिए महाराज, अपना घर आ गया।
1: आहा, कितना बड़ा महल है। अरे आप तो धन्य हैं महाराज।
0: देखा बंधु, कैसी युक्ति निकाली।
2: गुरुदेव, ठगी विद्या में तो आपका जवाब ही नहीं है।
0: देखो कितनी आसानी से ये हार भी झटक लिया और पूरी 1000 सोने की मोहरे भी,
2: दोनों चीजें हड़प ली आपने।
0: हाँ।
2: लेकिन गुरुदेव, हार और धन को लेकर हमें फौरन इस नगर को छोड़ देना चाहिए। क्यों?
1: कहते तो ठीक हो तुम भी, लगता है अब तुम भी ठगी विद्या के पारंगत होने लगे हो।
0: चलो दूसरे नगर चलते हैं।
2: चलिए गुरुदेव।

0: लगता है ये कोई बहुत बड़ा शिवालय है।
1: जी गुरुदेव, देखिए ना कैसा अद्भुत मेला है यहाँ पर।
0: तुम जरा मेला देखो, मैं अभी आता हूँ।
1: जी
0: भाई, भाई जरा सुनिए।
2: कहिए महाराज, ये कौन सा स्थान है और यहाँ क्या हो रहा है? लगता है आप परदेसी हैं। महाराज, ये झूसी प्रयाग का प्रमुख शिव मंदिर है और मैं इस मंदिर का महंत हूँ।
1: अच्छा,
2: आज से ही यहाँ शिव पुराण का पारायण शुरू हो रहा है। देश भर के संत महात्मा यहाँ इसीलिए आए हुए हैं। आइए, आप भी दर्शन कीजिए, सत्संग का आनंद उठाइए।
0: हाँ अवश्य, आपका अनुमान सही है कि मैं परदेसी हूँ।
2: कोई बात नहीं, मैं यहाँ के व्यवस्थापक महोदय से कहकर आपके आवास और भोजन आदि की व्यवस्था करवा देता हूँ।

शिव महिमा को सुनकर कैसा रोमांच हो रहा है। जय शिव शंकर, जय महादेव। सारे संसार का कल्याण करने वाले शिव, क्या मुझ पापी का भी कल्याण संभव है? हे भोले शंकर, तुम्हारी जय हो। अरे ये कैसे जोत है, कितना तेज और कैसी शीतलता, कैसा आनंद है। हे शिव शंकर, तुम्हारी जय हो। मुझे अपनी शरण में लो भगवान। मैंने जीवन भर कुकर्म किए हैं, क्या मुझे क्षमा नहीं करोगे? मैंने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया भगवान। झूठ बोल कर भोले भाले लोगों को ठगता रहा। मुझे क्षमा करो महादेव, मुझे क्षमा करो। मैं सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ। हाँ भगवान, मैं प्रायश्चित करता। हे शंकर,

0: महाराज, आपकी तबीयत कैसी है?
1: मैं अच्छा हूं। शिव महिमा को सुनकर मेरे मन के सारे रोग दूर हो गए।
0: महाराज, ये फल लीजिए, भगवान शंकर का प्रसाद है।
1: नहीं भाई, भगवान शंकर का असली प्रसाद तो मैंने ले लिया है, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं।
0: महाराज, थोड़ा चरणामृत तो ग्रहण कीजिए।
1: मैंने अंचल छोड़ दिया है।
0: भला क्यों?

0: आइए आइए वैद्यराज, देखिए ये प्रवासी ब्राह्मण हैं, इनका शरीर बुरी तरह तप रहा है।
1: लगता है कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है,
0: लेकिन मुंह पर कैसी कांति है। बंधुवर आंखें खोल।

0: लगता है कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है, लेकिन मुंह पर कैसी कांति है। बंधुवर, आंखें खोलिए, मेरे साथ वैद्यराज आए हैं।
1: महंत जी, अब मुझे कोई रोग नहीं, मैं निरोग हूं।
0: अरे, आपकी नाड़ी तो एकदम ठीक चल रही है। विचित्र बात है, इतने दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया तो भी किसी विकार के लक्षण नहीं दिखते। अच्छा बंधुवर, आपने अन्न जल क्यों त्याग दिया?
1: अपने सारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए। महंत जी,
2: कहिए बंधु।
1: मेरा प्रायश्चित भगवान शंकर को स्वीकार तो होगा ना? मुझे पश्चाताप है, घोर पश्चाताप।
2: निश्चय ही बंधु, शिव पुराण महात्म्य के 3rd अध्याय का 5वां श्लोक स्पष्ट रूप से कहता है, पश्चाताप पापकृताम पापानाम निष्कृति परा सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम्। अर्थात पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है।
1: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।
0: महन जी, यह आत्मा तो भगवान शिव को प्यारी हुई, इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कीजिए।

0: चलो इस महापापी आत्मा को यमपुरी में ले चलो।
1: ठहरो, ये पापात्मा नहीं पुण्यात्मा है। इसका स्थान यमपुरी नहीं शिवलोक है, इसे बंधन मुक्त करो।
0: किंतु देखिए, इसने तो जीवन भर अनेक पाप कर्म किए हैं, ये रहा इसका लेखा जोखा।
1: जीवन के अंतकाल में इसने शिव पुराण सुनकर अपने समस्त पापों का प्रायश्चित भी तो किया है, उसका लेखा जोखा नहीं किया तुमने? जय शिव शंकर, जय महादेव, जय जय भोले। ठहरो, ये क्या हो रहा है? मेरे दूतों के काम में विघ्न डालने वाले तुम कौन हो? हम भगवान शिव के गण हैं महाराज, इस पुण्य आत्मा को शिव धाम ले जा रहे हैं।
2: शिव धाम? ठहरो, मुझे ज्ञान दृष्टि से मालूम करने दो। हे नीलकंठ,

0: maar uit. Yo!
1: हे मुनि श्रेष्ठ सूत जी, आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस अद्भुत कथा को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है।
2: हे शौनक, सुनो, तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो, इसलिए मैं तुम्हें शिव पुराण की महिमा के संबंध में एक कथा और सुनाऊंगा।
1: हे महामुनि, आपका यह कथन अत्यंत मनोरम और संसार के समस्त प्राणियों के लिए पापनाशक और दुख निवारक है। जन कल्याण के लिए इसे अवश्य सुनाइए।

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन अर्चन भजन कीर्तन नाम सुमिरन उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।
2: उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

सरजू में बोरा रखिया जो गाय रघुकुल का।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं। और उधर रावण के दरबार में राग रंग उत्साह जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूपनखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

अपमान के बदला लेवे बदे सीखौलस। बहनी के अपमान के बदला लेवे बदे सीखौलस। काना भूसी कैलस हंस के ऐसन।

नवरात्र नवदुर्गानी उपासनानो आचे त्रीजो दिवस आ दिवसना दुर्गा देवी चंद्रघंटा एम कहवाये ए चंद्रघंटा जी नु आपणे आ रीते ध्यान करीशुं।

बेभ्यो न सुतानिव। हे महादेवी, अपनी घंटा जगतमा एना नादथी व्याप्त थईने दैत्योना तेजने नष्ट करे। हे महादेवी, जेम पोताना पुत्रोनी माता रक्षा करे, एम ए घंटा अमोने पापमाथी बचाओ, रक्षा करो। चंद्र घंटा शब्दनो अर्थ चंद्रः घंटायाम यस्यात्सा एम थाई, इतले के जेमनी घंटामा आह्लादकारक चंद्र से ए देवी चंद्र घंटा। ये तो जाणीतुं छे के घंटनो ध्वनि देव देवियों ने प्रसन्न करतो होय, आसुरी भावों ने बगाड़ी दे। बौद्ध जैन ईसाई धर्मस्थानों में घंटनो ध्वनि सुमंगल मनाय छे ए जाणीतुं छे। आ चंद्रघंटा देवी ए सिंहना वाहनवाळा छे, दशभुजा छे, अनेक प्रचंड शस्त्रों थी युक्त छे। एमनी घंटा दुर्भावनाओनो नाश करे छे। नाद ब्रह्मनी जाने के तेनाथी अनुभूति थई छे। चालो चालो, आ नाद अने दिव्य शब्द आयो त्यारे श्रुतिना मंत्र ने पण आपणे भूलीए सांभळीए। आ संदर्भमां देवी अथर्वशीर्षनो आ मंत्र जोईए।

अर्थात प्राण रूप देवोए जे प्रकाशमान वैखरी वाणी ने उत्पन्न करी एने अनेक प्रकार थी हा लोको बोले छे। ए कामधेनु तुल्य आनंददायक अन्न तथा बल अपनारा वाक्रूपिणी वाग्रूपिणी भगवती उत्तम स्तुतियोथी संतुष्ट थयेला अमारी पासे पधारो। ओम चंद्रघंटायै नमः। अने आ साथे विश्व राष्ट्र अने समष्टिना कल्याण मंगल माटे आपणे दुर्गाजीनी वंदना करीए छीए।

हे शरण आपनारा जगद्व्यापिनी विश्वरूपा दयामयी माँ दुर्गे, आपना चरणारविंद जगत्थी वंद्यमान होइश। हे जगत्तारिणी दुर्गे, आप अमारू सर्वनु रक्षण करो।

नमस्ते जगत् तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत् तारिणी त्राहि दुर्गे। अनाथ, दीन, तृष्णा अने कामनाओथी व्याकुल, भयभीत, बंधनग्रस्त आ जंतु जीवनी हे देवी तमेज एकमात्र गति छो, आ जीवने तारनारा छो। हे देवी दुर्गे, अपना चरणों में नमन नमन नमन। छेल्ला श्लोक में

हे मां दुर्गे, प्रचंड अने अदम्य लीलाओथी बधाय शत्रु दानवोने जड़ मूळथी आप उखेड़ी नाखनारा छो, दुखोमांथी तारनारा। हे दुर्गे, तमोज अमारी एक गति आधार छो, अपने प्रणाम, अपने मां अमारा वंदन। दुम दुर्गायै नमः। अथ विश्व

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

और नाव मझधार में आने, आधी उठत प्रचंड, आधी उठता।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।